आवी। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतह विरद की पैज, पंथ की जीत। श्री

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरु प्रसाद चक्र चहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश मतोज की जय कोट इंद्र इंद्राण साहे सहान गणिजै तिरभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की।

उपमा ते बैसंतर जार कोई भला कहो पावै बुरा कहो हम तन दियो है टार जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी तिस राख हो कृपा तार जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो राख हो लाज मुरार सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेवी है।

गए मसकत काल नानक ते मुखजले केती छुट्टी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब कि तेरे वस तेरा घर बला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर माण महत्ता तेजे अपना आप जर

नितानेओं के तान गुरु ने उट्टियों की उट गुरु ने आसरियों का आसरा धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जी महाराज।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती सुटी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

महत दिवस रात दाई दया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै त्रमह दूर करमी आपो अपनी।

रंग परंग अनेक न जापन करतबा, जी आए अंदर जियो सबके जान ला, सबके तेरे वस तेरा घर भला, तेरे घर आनंद वधाई तुद कर, मान माता दे जे अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिस जत कथा, नानक दा संदा तुदे अगै।

0: जो कुछ करना सो कर रहे आ।
1: सोदर आगा संभला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

अरे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो यह संसार। राम रस पिया रे, जेह रस बिसर गए रस यार, और मुए क्या रोई जो आपा थिर न रहाए। जो उपजय सो बिन सह, दुख कर रोवे बलाए। जह की उपजी तह रची, पीवत मर्दन लाग। कह कबीर चित चितया, राम सिमर बैराग। बहु परपंच कर पर तन लियावै, सुत दारा पहयान लुटावै। मान मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नबेरा तेरे जी पहली जै। शेन शेन तन शीजै, जरा जनावै। तब तेरी ओक कोई पानियो न पावे। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम की ना जप है सवेरा। लिख कतहे ना छूटिए, खिन खिन भूलन हार। बखसन हार बखस ले, नानक पार उतार। सुकहु टल गुर सेवियै, अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दीन, नूर अर सोह कुरसोह चटिया। तद डठे सचे पातशाह, माल जन्म जन्म दी कटिया। सजन सचा पातशाह, हो सिर शाह दशाह। जिस पास बैठिया सोहिया, सब नावे साहो। सज्जन सचा पातशाह, सिर शाह दशाहो। जिस पास बैठिया सोहिया, सब नावे सतनाम। श्री वाहे गुरु, साहिब जी सत
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ।

हृदराम की ना जपहे सवेरा कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदराम की ना जपहे सवेरा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिखै बिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखहु शरणाई की। गुर रामदास रखहु

अरसाहो कुरसाहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावेसाहो सज्जन सच्चा पाते साहो सिर साहा दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा वेसाहो सत नाम।

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवायो। सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पा।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दया, खेले सगल जगत, चंगियाँ बुरियाँ

के गुण गाए, सच्चे के गुण गाए। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, आसा महला चौथा, शांत कर।

सो जाने करतार पौड़े बिन सतगुर किने न पायो, बिन सतगुर किने न पाया। सतगुर बिच आप रखियो न कर प्रगट, आख सुनाया सतगुर मिले।

गुर अर्जन गुण सहज विचारं गुर रामदास कर किया प्रगासा सगल मनोरथ पूरी आसा तै जन्मत गुर।

सत युग आलीना गुर शब्द मन मानिया अपतीज पतीना गुर नानक सच नीम था सत गुर संग लीना गुर अर्जुन घर गुर रामदास अपरंपर बीना गुर नानक सच नीम था सत गुर संग लीना गुर अर्जुन घर गुर रामदास अपरंपर

करो बिमल बुद्ध सतगुर सामानो आजूनी संभव्यो सो जस कल कवियन बखाण्यो गुरु नानक अंगद वरियो गुरु अंगद अमर निदान गुरु रामदास अर्जुन वरियो पारस परस परमान सद जीवन अर्जुन अमोल आजूनी संभो पै पंजन पर दुख निवार अपार अनंबो अगे गहन प्राम प्रांत दहन शीतल सुखदातो असंभो उद्वेओ पुरख पूर्ण विदातो नानक याद अंगद अमर सतगुर शब्द समाएओ धन धन गुरु रामदास गुर जिन

0: गुर अर्जुन कल उचरै तै राज जोग रस जान्यो, भै निरपो माण्यो लाख में अलख लखायो, अगम गोचर गत गंभीर सत गुर परचायो, गुर परचै परवान राज में जोग कमायो, धन धन गुर धन अपार सार सुपर परायो, गुर गम प्रमाण जर जरयो सार संतोख समायो, गुर अर्जुन कल उचरै तै सहज जोग निज पायो।
1: अम्यो रसना बदन बरदा।

0: गुर अर्जुन का लुचर तै जन के कस दिपायो। सोरठे गुर अर्जुन पुर प्रमान पार्थो चाले नहीं नेजा नाम निशान। सतगुर शब्द सवार्यो पवजल सायर सेत नाम हरिका बोए था तो सतगुर संघेत। नाम लाग जाग उदरियो जगत उदाहरण नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवसर काम। बारंतर पूरी पड़ी जोत रूप हराप गुरु नानक आयो ताते अंगद पयो तत् स्यो तत् मिलायो। अंगद कृपा तार अमर सतगुर थिर कियो अमरदास अमरत छत्र गुरा में दियो। गुरु रामदास दर्शन परस कह मथुरा अमृत बहन मूरत पंच प्रमाण पुरख गुरु अर्जुन पिखो नैन।
1: सत रूप सत नाम सत संतोख धरियो और आद पुरख परतख लिखियो अक्षर मस्तक तुर। प्रगट ज्योत जग मग तेज भू मंडल छायो पारस परस परस परस।

सगल सृष्ट लग बित रहा ते जन जाचो जगतर पर जानियत बासुर रैन बास जाको हित नाम स्यो परम अतीत परमेसर के रंग रंगियो बासना ते बाहर पै देखियत धाम स्यो अपर परंपर पुरख स्यो प्रेम लागियो बिन भगवंत रस नाही और काम स्यो मथुरा को प्रभ सर्व में अर्जन गुर भगत का हेत पाए रहो मिल राम स्यो अंत न पावत देव सब मुन इंद्र महाशिव जोग करी फुन बेद बिरंच विचार रहो हर जा

0: अर्जुन माहे तरी। जग और ना याहे महातम मैं, अवतार उजागर आन कियो। तिनके दुख कोटक दूर गए, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। एह पदत ते मत चूक है रे मन, भेद बे भेद न जान बियो। पर तछ हृदय गुर अर्जुन कै, हर पूरन ब्रह्म निवास लियो।
1: जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बोतायो। कल घोर समुंदर में बूढ़त थे, कब हूँ मिट है नहीं रे पछतायो। तत् विचार जहे मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जप्यो जन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ ना आयो।
2: कल समुंदर पे रूप प्रगटे, हर नाम उधारन बसे संत जिस हृदय, दुख दारिद्र निवारन। निर्मल पेख अपार तास बिन अवर ना कोई, मन बच जिन जानेओ पयो तै समसर सोई। तरन गगन नव खंड मह, ज्योत स्वरूपी।

सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुपाय दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाहद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिरशाहद शाह जिस पास बैठिया

गुरु बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरकड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दे सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया

हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामा दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दादान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिआं दे माण नेताणिआं दे ताण ने ओटिआं दी ओट धन।

पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदिर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु।